दुनिया से कम कल की आंख टोक गंगा यारानिया देगवान गुल यहाँ गागलो डुबोने.